0: अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंक्चर हो रहा था।
1: हम पहुंचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह।